0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: संगीत संगीत
2: संगीत रुदी खुराक है
1: आत्मा दी आवाज है
2: कुदरत दा वरदान है
1: और प्यार दी जुबान है
2: जिंदगी जिंदगी
1: जिंदगी प्यार है
2: जिंदगी सांझ है खिमा है
1: जिंदगी एक रंगमंच भी है
2: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
3: कल्चर ऑफ पंजाब
2: कल्चर ऑफ पंजाब

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जिंदगी एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात कर लें कम होगी और यकीनन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को और इसके किसी भी पहलू को जनरलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखें ना, किसी के लिए तो जिंदगी खुशियों का ताजमहल है और किसी के लिए अपनी हसरतों का कब्रिस्तान, किसी के लिए सुहानी सुबह है और किसी के लिए ये अंधेरी रात। कुछ को लगता है कि ये बादे सबा है और कुछ के लिए जून जुलाई की झुलसती लू। बहरहाल यहीं खत्म नहीं करेंगे, इस बात को जारी रखेंगे, पर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों न आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्त लव।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
2: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ
4: अच्छा आपकी सोच आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लो सेल्फ एस्टीम है ना दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दिल डाई ऑफ शेम और वो इसलिए कॉज इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटीरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है, कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है। How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि How very confident and intelligent.

0: culture of Punjab. Aapka daily entertainment dose.
1: अक्सर हम लोग इंक्रीज्ड वर्कलोड की बहुत शिकायत करते हैं. किसी से भी पूछ लें कि आप मिलते ही नहीं आजकल, तो सबसे कॉमन आंसर ये है कि टाइम ही नहीं मिलता. असल में काम नहीं बढ़ा, हम लोग अनऑर्गेनाइज ज्यादा हो गए हैं. अच्छा, आपको पता है कि एक हनी बी 2 मिलियन फ्लास्क को विजिट करने के बाद महज 500 ग्राम शहद इकट्ठा कर पाती है. तो जरा कंपेयर करें, हमारा वर्कलोड तो कुछ भी नहीं ना उसके मुकाबले में, फिर शिकायत क्यों इतनी काम से, लाइफ से. बहरहाल सब शिकायतों को साइड पर रख, एंजॉय करें ये अगला ट्रैक कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: अक्सर ऐसा होता है कि अभी तो कामयाबी की सीढ़ी के पहले कदम पर ही होते हैं, अभी तो नाम मात्र ही कुछ अचीव किया होता है कि that tiny little bit of success shoots up and goes to your head. और after effect क्या होता है कि इस बीच आपकी नजर, आपका फोकस अपने टारगेट से हट जाता है. But always remember कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते. दुनिया जीतने का हौसला रखिए जनाब, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी जीत से सिकंदर नहीं बनते.

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ खुल कर हंस पाना बड़ों और इंटेलिजेंट लोगों की रिस्पेक्ट गेन कर पाना और बच्चों का प्यार जीत पाना लोगों में अच्छाई ढूंढ पाना दुनिया को अच्छा बनाने में कोई योगदान दे पाना चाहे वो पेड़ लगाना हो चैरिटी करना हो ये जान पाना महसूस कर पाना कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाई क्योंकि आप उनके साथ थे मेरे लिए ये है कामयाबी फॉर मी दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सक्सेस

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ऐसा होता है जिंदगी में कि हम औरों के करीब जाने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं, खुद को पहचान ही नहीं पाते। पता नहीं वजह टाइम की शॉर्टेज है या फिर कोई इंक्लिनेशन, कोई चाहत ही नहीं है खुद को जानने की, खुद से मिलने की। पर यकीन माने, जब आप अपने खुद के दोस्त बन जाएंगे तो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। क्योंकि अगर जिंदगी के सफर में अकेलेपन से डरते हो, दोस्तों की चाहत में दर दर भटकते हो, अगर करोगे अपने आप से ही दोस्ती, न होगा फिर कोई डर जब हम सफर खुद जैसा उम्दा हो।

आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू बी अनदर फेस इन द क्राउड. मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है. भीड़ में लाखों चेहरों में गुम एक आम सा चेहरा. और क्यों बनूं मैं एक आम सा चेहरा जबकि मैं और मेरा मन दोनों ये जानते हैं कि मैं खास हूँ, बेहद खास. पर सिर्फ ये पता होने से बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुझे यकीन करना होगा खुद पर, अपने टैलेंट पर, अपनी खूबियों पर. तब जन्म होगा मेरा दोबारा से. I know I'm not going to live forever, that's why I'll make this life the way I want it.

fight till you drop. Never stop. Don't give up till you reach the top because you're the best. और अगर वाकई में वो बेस्ट वाला एटीट्यूड है आप में तो फिर कोई भी छोटे मोटे सेटबैक्स आपको हिला नहीं पाएंगे क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो चाहे हजारों बार गिर जाएं वापस अपने पांव पर झट से खड़े हो जाते हैं क्योंकि गिर के हार के फिर से उठ खड़े होने का जज्बा इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल और टैलेंट इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन एंड गट्स एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज़ यू आर द बेस्ट।